0: यार क्या रे जगह
1: शरीर सही ना रे थी
0: अब आने नू ना फुल
1: क्या लेना तू
2: Yeah, man!

0: क्लास तुम कुफा भी
1: फ्रॉम से फाला हमको मनु का ना तुकन वे अथो मार पेम सारा सारा जान बे रान ते मिला तो बेचा का लेती हो ते पा मिसी सके तो कठान जान ले रान बची चाले ले फाओ ना ते वे अंधुआ फाना रूफानी संभूला ना दिस योम चीरियां को आ रावट सो मिस पोतोरे रितु कुंबा पोतोरे जाम मजाका चीर मार मार मसापचा ते वोट सहया चान या चान मिस ते अब चालो लोग सेवा सेनो फाउला ना ये ता कुंबा आरुस मंचिक
2: आ रनाम को मनु को ना सो निफाउला ना वे नेती मिफांडे काम से दे वे नेती ने फामरोना ना फुट सफ्ता सा हे महाकाशिक रान जो रेस का बारा महाकाशिकीर जो दे सैते नहीं नीचे मिला अच्छा रान निको तो नी जान माते क्या छुमाइन क्या सबसा पानी बजानी मोले इर नाराम से जो मिले को
3: जाने वाले बाबू जाना तुम छिटुकने दूर दूर वाला जान मिला सुलो नीर मामा नाइन रे जीर तेले जीर
4: चमेना कुरुता ना जानती लाशा रिचा गाम ते माना रक्षानी फिनोसिया ना गाम अंचिरा बा फिनोसिया ना पेपे कुपु ये ते ना रियन मिचनर ने पोर्टों पियम ले रेसे का सिक्योरिटी वो चन मुतारी गनो ते माइस में पियनी नवे ये रेसे का ट्यूओ जो से बेतु चेक चेक नवे से कुनुला ना नी हम सोए चितुं चमापतुं गंद्रा मेथ रेसे का फसिंबान
0: Shota tumpkula, shota tumpkufafu.

0: तुमको वाह भी
1: फालू वंते न वे फालू वंते न दे चीना ताऊ हिची वेत का सांबट फिएना नूल बिची फालू वंते न चमाना पियांगारन अंपिगु का मामी निसंबरावारन निफालू वंते न चितुसा चिम्यातु यंदंदंदन वूला व्यंतिलंबातु फाइजक नते नम तुई चमित लानग चाराइक चितुस नुआवंतरानग निफालू वंते न चिफान मेजंदास नते निवाइने सुलते नियास फाफालू वंते न देराइन लाइम ताजन अनंदा चांबुन इलेफ्ते नराजन निफालू वंते न चाइटेटन जावन कायंबुनिया ते न रकुफन अवनावन फाफानेटेना ते न इतुवि अम्नियाफ म्यारकम साइन म्यारकम ताफ निफालू वंते न चिएंट केस दुकन निफिएवेरा ते न उमाविता तुकन फाइफ्टन मार उम तपतपा काट नुआफ पिरेनेना इतेरा बुनाट निफालू वंते न चिफान मेजंबाना निएफ्ट वाइनी यंजाका कलालान फाफालू वंते न विम्बना अम्रातन अनाजनेन ते न वाने वरापतन निफालू वंते न चिता दियावंते अगा ना उरका मंदाइंगा बाप दे फाफालू वंते न चांत काफते न फाफांता नियान जैतीन फिरेनेन निफालू वंते न चुए एनोंचाकु फनिफाओ काकुसा मचुंगा नत फाकु फाफालू वंते न आइता ना तुकी कन मारोनिस निसांबता सुफुकी निफालू वंते न सुफुला फाफ काटा ना युद्याना नुल्ला उसांदा पिसंद्रातन फाफालू वंते न मताना फामारीनन इताइजा निफाओक चुआने पिवारीनन निफालू वंते न सुलाजावाद बाइंगा उम्पेलेजा पेउ कनेफाट्रान बाइंगा फाफालू वंते न मलाजाने ओंट्रान चिमसलांगालांग नमिला रानरानी इजान काइजानी निफालू वंते न नेतीन राजांतिक सुनाम नुनते न निदीरन तंपुंज न्यारेता चिस्तानी नमुइजन न्यारेंगी नमुइजन न्रानी अनेफा राचिजानी निफालू वंते न येना चिकेतुन फतोफ्ते वंते न साई केमिजुरु यातोन मारना मंडपा टाट न्तांजना उटाटारन दावों साई
0: शोटो तुमकुला शोटो तुमकुवाव